0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
1: सुप्रभात, नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये है आकाशवाणी कोलकाता का 100.1 FM गोल्ड और हाजिर है आपकी आज ही फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत, जो तहे दिल से आप सभी का खैर मकदम करती है, स्वागत करती है, वेलकम करती है उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहानी सुबह। और हमेशा की तरह यही कहूंगी कि अगर सुबह को सुहानी बनाना है और तो क्या करना है, जैसे ही आप उठते हैं ना, सबसे पहले अपने चेहरे पर वो ओरिजिनल वाला मेकअप कीजिए, यानी कि मुस्कुराते हुए उठिए, क्योंकि जब आप मुस्कुरा कर उठेंगे ना तो सारा दिन आपकी ताजगी बनी रहेगी। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए सबको सुबह सुबह चाहिए क्या शक्ति, एनर्जी, तो क्यों ना हम सुने हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। वाणी जयराम और साथियों की आवाज में फिल्म गुड्डी से सुनते हैं इस गीत को।

क्यों इस गीत को भक्ति गीत, ये जो ऐसा एक गीत है ना जिसे सुनते सुनते अगर आप गुनगुनाएंगे तो फिर आपको कैसा फील होगा, मतलब ये सुनने के बाद गाने के बाद फीलिंग कैसी होगी, इसे जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा अगला तराना। और अगला तराना जिसे आप सुनेंगे, गीत सुनेंगे, ट्रैक सुनेंगे, उसे हमने लिया है फिल्म कपूर एंड सन से। अरमान मलिक और अमल मलिक की आवाज में सुनेंगे तो समझ में आ ही जाएगा।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: इस खूबसूरत से गीत को आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे बड़ी खूबसूरती से कलमबद्ध किया और संगीत से सवारा है हृदयनाथ मंगेशकर ने। और ऐसा है दोस्तों कि मतलब सुबह उठते हैं ना तो पहले जो सबसे पहला काम जो है अपने आप को खुश रखना, और वो एक मुस्कुराहट से शुरुआत करते हैं हम। और अब आपको बता दूं कि आज के दिन मतलब कोलकाता के लिए लोकल फोरकास्ट क्या है, तो लोकल फोरकास्ट अगले 24 घंटे के लिए वैलिड है, जो वो कुछ इस तरह है। कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर एक के बाद एक 34 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करूं तो 34 डिग्री सेल्सियस सामान्य से -1.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम है, और मिनिमम टेम्परेचर की बात करूं तो 26.3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से -0.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो सामान्य से कम है, और मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 88%, मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी 54%। और अब जब आज के दिन का मतलब आज के दिन के लिए कोलकाता का लोकल फोरकास्ट आप जान ही गए हैं, तो चलिए मौसम का जादू कैसा होता है ये भी सुनते हैं।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 One, let's start the fun!

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:23। अरे 24 हो गया, 7:24। समय की तो यही खासियत है कि रुकती नहीं, बस चलते रहती है। और यही संदेशा हम सभी को देती है कि चलते रहे हम, क्योंकि जो निरंतर चलता है एक ना एक दिन अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त कर लेता है। और अब आपसे कुछ बातें साझा करूंगी 12 मई की जो प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हैं उससे संबंधित। तो आपको बता दूं, 1459 में राव जोधा ने जोधपुर राजस्थान की स्थापना की, राजस्थान में जो जोधपुर है उसकी स्थापना की थी 12 मई को। और 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे पुरंदर की संधि के बाद 12 मई। 1638 मुगल सम्राट शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला के निर्माण का आदेश दिया। 1820 में आज ही के दिन आधुनिक नर्सिंग की नींव रखने वाली लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ। और चलिए इसी बात पे मैं आपको सुनवाती हूं किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, मुकेश की आवाज में फिल्म अनाड़ी से।

ऐसा है दोस्तों कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है इंटरनेशनल नर्सेस डे। अस्पताल में मरीजों की सबसे ज्यादा देखभाल अगर कोई करता है तो वो नर्स होती है। डॉक्टर इलाज बताते हैं, लेकिन मरीज की दवा देने से लेकर उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखने तक का काम नर्सें पूरे समर्पण के साथ करती हैं। यही वजह है कि हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के नर्सेस की मेहनत, सेवा और त्याग को सम्मान देने के लिए खास मनाया जाता है। कोरोना महामारी के समय भी लोगों ने देखा कि किस तरह नर्सेस जो हैं वे अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा में लगी रहीं। ऐसे में ये दिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि उन सभी हेल्थ वर्कर्स को धन्यवाद कहने का मौका भी है जो दिन रात लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 12 मई को ही क्यों मनाया जाता है नर्स डे, इंटरनेशनल नर्सेस डे। इंटरनेशनल नर्सेस डे हर साल 12 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक मानी जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। उन्होंने नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशे के रूप में पहचान दिलाई। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान उन्होंने घायल सैनिकों की जिस तरीके से सेवा की उसे पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी। उनके काम और योगदान को याद करने के लिए ये दिन चुना गया था। और अब अगला गीत आप सभी के लिए मन्ना डे की आवाज में, फिल्म बादल से, अपने लिए जिए तो क्या जिए ए दिल तुझी जमाने के लिए।

कहते हैं कि अखबार अगर हाथ में आए तो सबसे पहले इंसान ऐसी खबर पढ़ना चाहता है जिससे वो खुश हो सके, जिसमें उसका कुछ प्रॉफिट होने वाला हो या फिर प्रॉफिट से जुड़ी बात हो। तो मैं आपके प्रॉफिट वाले बात को दिमाग में रखते हुए ऐसी ही खबर आप तक पहुंचाऊंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने की अगुवाई में होने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक में कई बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक फैसले लिए गए हैं। सोमवार को नवान्नों में हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष बढ़ाने, केंद्रीय योजनाओं को लागू करने, बीएसएफ को सीमा पर कंटीले तार लगाने के लिए जमीन देने और जनगणना संबंधी केंद्र के निर्देश को लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। राज्य में यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में 1 जून से आयुष्मान भारत योजना लागू हो जाएगी। महिलाओं को ध्यान

से सुनिएगा महिलाएं, महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी 1 जून से। अन्नपूर्णा भंडार के तहत महिलाओं को प्रति महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। राज्य में सोमवार से ही भारतीय न्याय संहिता अब प्रभावी तरीके से लागू हो गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वल योजना सहित कई केंद्रीय योजनाओं को भी राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया। अब बहुत सारी फायदे की बात तो मैंने सुना दी, अब आप तक पहुंचाऊंगी अगली खबर जो है वो है पीएम ने 24 घंटे में फिर की अपील। अब ये अपील क्या है, 11 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में लगातार दूसरी बार देशवासियों से तेल की बचत करने की अपील की है। उन्होंने वडोदरा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट पिछले कई वर्षों के सबसे गंभीर संकटों में से एक है। उन्होंने विश्वास जताया कि जैसे भारत ने कोविड-19 महामारी से सफलतापूर्वक उभरकर आगे बढ़ा, वैसे ही इस संकट से भी देश बाहर निकलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को वैश्विक जो सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है ताकि देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके। तो चलिए एक गाना आपको सुनवाती हूं और उसके बाद और भी खबरें आपसे साझा करूंगी।

कैनरा बैंक को 4,506 करोड़ का मुनाफा हुआ, तो ये भी है एक अच्छी खबर। दूसरी बात यह है कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में जारी व्यवधान के बावजूद भारत की ईंधन आपूर्ति में राशनिंग करने यानी कोटा लागू करने की कोई योजना नहीं है और कहा जा रहा है कि भारत के पास पर्याप्त ईंधन भंडार है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां जो है वो एहतियाती प्रबंधन उपाय अपना रही हैं, जिनमें वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड व्यवस्था को बढ़ावा देना शामिल है।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

सूरज जगन और शर्मन जोशी की आवाज में फिल्म थ्री इडियट से अभी ये गाना सुना आपने, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस टू प्रूव मायसेल्फ अगेन। और अगला गीत नरेश अय्यर और मोहम्मद असलम की आवाज में फिल्म रंग दे बसंती से।

एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चल रहा था और बीच बीच में रुक रुक कर अपने पैरों के निशान देखकर खुश होता। आगे बढ़ता, पैरों के निशान देखता और उसे देखकर बनी डिजाइन को देखकर बहुत खुश होता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता हूँ, अपना दोस्त मानता हूँ, पर ये तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के जो निशान को ही तुमने मिटा दिया, कैसी दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, वो देखो, पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़े को पकड़ रहे हैं। ए मित्र, ए दोस्त, तुमको वो पकड़ ना ले, बस इसीलिए मैंने निशान मिटा दिए। सच यही है, कई बार हम सामने वालों की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और मन में वैर लाने से बेहतर है कि हम सोच समझकर निष्कर्ष निकालें। तो अगर सही तरीके से दिमाग लगाएंगे तो सही निष्कर्ष पर आएंगे। और अब चलते चलते सुलक्षणा पर्वत यही कहेगी आप सभी से कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहें। और अब मैं आप सभी के लिए आज सुहानी सुबह कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके लिए जो प्ले करूंगी वो हमने लिया है फिल्म चोरी चोरी से। हाँ, गाने को चोरी चोरी नहीं लिया, फिल्म का नाम है चोरी चोरी। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में इस गीत को सुनेंगे, पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में। और इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नेउक शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरिनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों की एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
4: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
8: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
9: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म सा।

0: धर्मम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
2: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ। और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
4: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. ADRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel. Stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis, Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
2: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
1: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
2: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
1: Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College Playground in Khanapara area of the city. 4 ministers, including 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF, will also take oath along with Chief Minister. We have more from a correspondent.
3: Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, four other members of the Council of Ministers will also be sworn in today. The four cabinet ministers are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro, and Ajanta Niyog. The swearing-in ceremony will be witnessed by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers of

0: আকাশবাণী এফএম গোল্ড খাঁটি সোনা।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM Gold। মন কাড়া কথা আর মন মাতানো গান শুনছেন মনের মেলোডি 100.1 FM Gold এ মনের মেলোডি।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है।

0: गुजरात के वडोदरा में कल जन और के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमुड़ी को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापड़ी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने पुंछ जिले के सुरनकोट सेक्टर के परिचालन क्षेत्रों का दौरा किया और आतंकवाद रोधी अभियानों की समीक्षा की। इस दौरान कोर कमांडर को वरिष्ठ अधिकारियों ने आतंकरोधी ग्रिड, खुफिया नेटवर्क और अंतर एजेंसी समन्वय तंत्र के बारे में भी जानकारी दी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाए। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat, yesterday evening, Mr.

0: किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारत और श्रीलंका सदियों से विकसित सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है।
3: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
4: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
5: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत और श्रीलंका सदियों से विकसित सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हैं। संसद भवन में श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत आपसी संबंधों की मजबूत नींव है। ये प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका की महिला और बाल मामलों की मंत्री सरोजा सावित्री पॉलराज के नेतृत्व में भारत आया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। ईरान ने शांति प्रस्ताव में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है।
4: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही हैं, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमरीका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेही तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पाकिस्तान ने अमरीका के हवाई हमलों से बचाने के लिए ईरान के सैन्य विमानों को अपने हवाई अड्डों पर उतरने की अनुमति दे दी है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने 28 फरवरी को शुरू हुए अमरीका ईरान संघर्ष समाप्त करने में पाकिस्तान की मध्यस्थता भूमिका के मूल्यांकन की मांग की है। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अप्रैल में संघर्ष विराम घोषणा के तुरंत बाद ईरान ने एक खुफिया विमान सहित कई विमान पाकिस्तान के नूर खान हवाई अड्डे पर भेजे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ताइवान और ऊर्जा सुरक्षा उनकी आगामी चीन यात्रा के दौरान बातचीत के प्रमुख मुद्दे रहेंगे। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अपने संबंधों की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि ताइवान को लेकर तनाव नहीं बढ़ेगा।
6: व्हाइट हाउस में कल मात्र स्वास्थ्य कार्यक्रम में श्री ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन चीन के साथ बेहतर तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने पूर्व अमेरिकी प्रशासन पर चीन को अमेरिका का फायदा उठाने देने का भी आरोप लगाया। श्री ट्रंप ने चीन से संबंधित अपनी टिप्पणियों को पश्चिम एशिया में व्यापक तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य बंद किए जाने की चिंताओं से जोड़ा। उन्होंने कहा कि चीन को अपने तेल भंडार का लगभग 40% हिस्सा होर्मुज से प्राप्त होता है। श्री ट्रंप ने कहा कि शी चिनफिंग के साथ शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ताओं में ऊर्जा और ईरान प्रमुख विषय होंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: बांग्लादेश में क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
7: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, विश्व समाचार, ढाका।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। स्वास्थ्य सेवा में नर्सों के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 मई को ये दिवस मनाया जाता है। फ्रेंच रिवेरा में स्वतंत्र सिनेमा का वार्षिक उत्सव कांस फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। जॉन ट्रिवोल्टा, एडम ड्राइवर और बारबरा स्ट्रीसैंड सहित कई सुपरस्टार रेड कारपेट पर नजर आएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारत और श्रीलंका सदियों से विकसित सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हैं। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good morning, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in bid to save foreign exchange amid West Asia crisis. Prime Minister to be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. Lok Sabha Speaker Om Birla says India and Sri Lanka are bound by deep civilizational, cultural and spiritual ties that have evolved over centuries. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products and to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduce consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden of the country's resources.
1: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च हो, जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैंने मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
8: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to a steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
1: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
8: Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy from Friday. The visit will further deepen India's partnership with Europe across sectors, particularly trade and investment ties, in light of the recently concluded India-EU FTA. We have more from a correspondent.
9: On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. Then the Prime Minister will reach Netherlands on Friday and call on King William Alexander and Queen Maxima. He will also hold talks with Prime Minister Rob Jetten. For the third leg of the visit, Mr. Modi will travel to Gothenburg, Sweden on Sunday and hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway on Monday for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. As part of the final leg of his visit, the Prime Minister will undertake an official visit to Italy on Tuesday. During the visit, Mr. Modi will call on the Italian President Sergio Mattarella and hold talks with Prime Minister Giorgia Meloni. With Anupam Mishra, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
8: Lok Sabha Speaker Om Birla has said that India and Sri Lanka are bound by deep civilizational, cultural and spiritual ties that have evolved over centuries. Referring to the shared Buddhist heritage of the two nations, Mr. Birla noted that these enduring links continue to form the foundation of the warm and friendly relations between both the nations. The Lok Sabha Speaker made these remarks while interacting with the Women Parliamentarians Caucus of Sri Lanka at Parliament House yesterday. The delegation was led by Minister of Women and Child Affairs of Sri Lanka, Saroja Savitri Polraj. This is Akashvani and you are listening to The World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. U.S. President Donald Trump has said the ceasefire with Iran was at its weakest and on massive life support, a day after he rejected Tehran's proposal to end the months-long war as totally unacceptable. In response to a question on the ceasefire with Iran, in the wake of the rejection of the peace proposal, Trump told reporters at the Oval Office that it is at its weakest. After reading that piece of garbage they sent, it's on life support, massive life support, he added.
10: It's unbelievably weak. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, they said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
8: Trump received the Iranian proposal on Sunday amid hopes that it could lead to a breakthrough to end the war with Iran that began on February 28, blocking the key sea route for global oil supplies, leading to fuel shortages in several countries. A West Asia correspondent has filed this report.
11: Iran's demands focused heavily on wartime and economic conditions rather than immediate nuclear concessions, a framing that Washington appears unwilling to accept at this stage. The gap between the two sides' position remained wide, with mediators struggling to find common ground as battlefield pressures and economic stress continue to mount across West Asia. Meanwhile, in the United Arab Emirates, the government has moved to formalize its response to attacks on national infrastructure. Authorities have established a national committee tasked with documenting damage from more than 2,800 drones and missiles that have struck the Emirati territory. The UAE is now pursuing international legal accountability and seeking reparations for strikes in its landmark and energy facilities. This is Vinod Kumar for World News from Dubai.
8: Bangladesh, a three-member inquiry committee has been constituted to probe the reason behind the national cricket team's withdrawal from the ICC Men's T20 World Cup in India. According to an official government order dated May 10th, former Additional Secretary Dr. A.K.M. Oliullah will head the panel, which also includes former Bangladesh captain and current chief selector Habibul Bashir and Supreme Court lawyer Faisal Dastagir. The committee has been asked to submit its findings within 15 working days. We have more from a correspondent.
7: Bangladesh withdrew from the T20 World Cup, jointly hosted by India and Sri Lanka, from February 7 to March 8 this year after the International Cricket Council, ICC, refused a request to shift Bangladesh matches from India to Sri Lanka over security concerns. The controversy emerged after the Board of Control for Cricket in India, BCCI, reportedly dropped Bangladesh pacer Mustafizur Rahman from the IPL. The then Bangladesh Cricket Board, BCB, led by Aminul Islam, expressed concern over the safety of players, officials and journalists travelling to India for the tournament. After the ICC stated that security arrangements were adequate, the interim government subsequently directed the BCB to withdraw from the tournament, a decision that drew sharp criticism from former cricketers and sports analysts. Naval Singh Parmar, World News, Dhaka.
8: In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Punjab Kings by 3 wickets at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharmashala last night, chasing a target of 211 runs. Set by Punjab Kings, Delhi Capitals scored 216 for 7 in 19 overs. Keeper Akshar Patel was the highest scorer with 56 runs. David Miller made 51 runs off 28 balls. For Punjab Kings, Arshdeep Singh and Yash Thakur took 2 wickets each. Earlier, Delhi Capitals won the toss and opted to bowl. Put into bat, Punjab Kings scored 210 for 5 in the stipulated 20 overs. Shreyas Iyer was the top scorer with 59 runs, while Priyansh Arya made 56 runs. And now, before we close, here are the highlights of the bulletin. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save foreign exchange amid West Asia crisis. Prime Minister to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. Lok Sabha Speaker Om Birla says India and Sri Lanka are bound by deep civilizational, cultural and spiritual ties that have evolved over centuries. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And that concludes morning's World News Bulletin. For more updates, stay tuned to Akashvani.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापट्टी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोहरीघाट औडिहार यात्री पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। इससे मऊ और गाजीपुर जिलों के यात्रियों को किफायती और सुरक्षित रेल सेवा उपलब्ध होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस रेल सेवा का विस्तार जल्द ही वाराणसी तक किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख चार लेन का गलियारा गंगा के दक्षिण में प्रयागराज कानपुर आगरा दिल्ली मार्ग के साथ विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान के फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 474 अंक लुढ़ककर 75,541 पर, जबकि निफ्टी 126 अंक की गिरावट के साथ 23,689 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
1: सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आई हूँ 100.1 FM गोल्ड पर आज लेकर कार्यक्रम। सुबह आई थी 7 बजे लेकर कार्यक्रम सुहानी सुबह, और अभी आई हूँ लेकर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। और आज एक से बढ़कर एक गाने सुनेंगे जो कि हमेशा हर रोज सुनते हैं, और यही तो खासियत है लो आ गई उनकी याद की कि आपको एक से बढ़कर एक गाने हम सुनवाते हैं। और स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 11:11:22, और इस सफर में आपके साथ है आपकी आजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत, जो तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती है, वेलकम करती है उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है लो आ गई उनकी याद। और देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी जब दिल से किसी से मिलता है तो बिना कारण के तो हो नहीं सकता। ऐसा मैं नहीं कहती कि दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा, ये आप सुनेंगे इस गीत में जिसे हमने लिया है फिल्म चरित्रहीन से। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को सुनेंगे। आनंद बख्शी ने कलमबद्ध किया है और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा और ये कारण कुछ और नहीं बल्कि अपनापन है और प्यार है। और अब आगे बढ़ते हुए ऐसा है ना दोस्तों कि यूं अगर कोई चोरी चोरी आए और कुछ वैल्यूबल कुछ कीमती चीज़ ले जाए और पकड़ा जाए तो उसकी बड़ी पिटाई होती है कि चोर चोरी करके ले गया, ये सामान लिया, वो सामान लिया, और कभी कभी तो उसे हम पुलिस के हवाले भी कर देते हैं। लेकिन लेकिन कुछ चोर ऐसे भी होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आपके दिल को चुरा ले जाते हैं, यानी कि आपके दिल पर राज करते हैं और हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, बल्कि हमें भी ऐसे मतलब जो चुपके चुपके आया और आपके दिल पर राज कर रहा है उससे आपको भी प्यार हो जाता है। अब ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा आप सुनेंगे कोकिल कंठी लता मंगेशकर की आवाज में अगले गीत में फिल्म नूरी से जानिसा अख्तर ने।

जब बात हो रही है चोरी चोरी और किसी के आने की और प्यार की, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, वो ये है कि हम भी तो दुनिया में जब आते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है। अब ये बात अलग है कि अल्ट्रासाउंड करके या फिर आप वैज्ञानिक तरीके से जान जाते हैं कि कौन आ रहा है, लेकिन जो आ रहा है उसका स्वभाव कैसा होगा ये तो आज तक विज्ञान नहीं पता लगा पाया। तो कुछ मतलब चीजें ऐसी होती है जो कि मतलब बहुत गोपनीय तरीके से सामने आती है। और रही बात प्यार की, तो प्यार का दूसरा नाम अगर कहूं, प्यार की शुरुआत ही होती है माँ से। और मुझे तो अजीब लगता है कि हम साल में एक दिन मनाते हैं मदर्स डे, जबकि ऐसा कोई लम्हा नहीं है जिस लम्हे में हम माँ से अलग हो पाते हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही माँ से जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए इसी बात पे आपको सुनवाती हूँ फिल्म राजा और रंग से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत।

पता नहीं क्यों, मतलब प्यार शब्द का अगर कहूँ अर्थ सही मायने में क्या है तो वो माँ है। और कार्यक्रम लुआ गई उनकी याद के सफर को आगे बढ़ाते हुए अगला गीत आप सभी के लिए आशा भोसले की आवाज में, फिल्म नरम गरम से।

ऐसा है दोस्तों कि बचपन में ना जब हम बहुत छोटे होते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा जुड़ाव कहिए, प्यार कहिए, अपनापन कहिए या सबसे गहरा रिश्ता वो माता से होता है और उसके बाद पिता से। मतलब कहीं ना कहीं हमारे जहन में होता है एक आम धारणा है कि बच्चे माँ से नहीं डरते बल्कि प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं और अपने पिताजी को देख के, पापा को देख के, मतलब रिस्पेक्ट तो बहुत होता है लेकिन साथ में डर भी होता है। जो बात माँ से खुलकर कह पाते हैं, आसानी से कह पाते हैं या बिना कहे भी माँ समझ जाती है, पिता को बताना पड़ता है। उसका कारण यही है कि माँ आज के दौर में भले माँ बाहर जाती हो, काम करती हो, लेकिन पहले 24/7 हर वक्त माँ घर पर ही रहती थी। तो माँ हमारे हर गतिविधि से वाकिफ रहती थी कि अगर बच्चा हंसता है तो पीछे क्या कारण हो सकता है, अगर उदास है तो क्या बात है, और अगर इसे खुश करना है तो कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं ये बात आज भी मुझे लगता है कि पुरुषों के मन में, खास करके पिता के मन में, ये कभी कभी बात उठती है कि बच्चों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन फिर भी उनका झुकाव माँ के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही होता है। लेकिन क्या किया जाए, शायद ये ज़िंदगी का यही रुख है और यही चलन बन गया है। और माता पिता के बाद अगर कोई बच्चा सबसे ज़्यादा प्यार करता है बचपन में तो वो होते हैं उसके भाई बहन। और अगर भाई बहन बड़े हो ना, मतलब भैया हो, दीदी हो, तो फिर वो इतना केयरिंग होते हैं, इतना प्यार देते हैं, जैसे अगर बड़ी दीदी हो तो लगता है कि वो छोटी मम्मी है क्योंकि वो माँ की तरह ही संभालती है आपको, और बड़ा भैया हो तो वो इतने जिम्मेदारी से आपका ख्याल रखता है कि मतलब अगर उन बातों को आदमी याद करे तो शायद आंखें नम हो जाए। और अब अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से किशोर कुमार की आवाज़ में।

ऐसा है दोस्तों कि हम किसी खास दिन पर आप देखते होंगे कि ज्यादातर वो गाने बजते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन हुआ तो फिर बहुत सारे भाई बहन के गाने बजाए जाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है ना कि ये जो रिश्ते हैं ये उस दिन तो आप खास तरीके से मनाइए, लेकिन ये जो 365 दिन में से सिर्फ एक दिन तक सीमित ना रखिए। बीच बीच में ये जो भाई बहन का प्यार है ना, ये और भी बढ़ता है जब आप एक दूसरे से मिलते हो जुलते हो, और अगर बहुत व्यस्त हो तो कम से कम बातें तो कर लिया करो फोन पे। इससे क्या होता है ना कि ये जो दिल से दिल तक वाले जो कनेक्शन होता है वो बना रहता है और बढ़ते जाता है, क्योंकि आपके भाई बहन जो है असली में सबसे पहले लाइफ के आपके मित्र दोस्त फ्रेंड वही होते हैं, और आपके रग रग से वाकिफ होते हैं, क्योंकि ये आपके भाई बहन जो है ना वो पार्टनर इन क्राइम हुआ करते थे बचपन में, और अभी भी जो बचपन में बहुत सारे जिनके भाई बहन है वो समझ सकते हैं इस बात को, और मंद मंद मुस्कान भी उनके चेहरे पे आ रही होगी कि हाँ सुलक्षणा तो आज सारी पोल पट्टी खोल रही है, लेकिन क्या करूं ये तो घर घर की बात है। तो अब ये घर घर की बात नहीं कह सकती, पहले तो ज़्यादा था क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली बनने लगे हैं और ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एक ही बच्चा हो तो ठीक है, लेकिन ऐसे में क्या है ना कि कई सारे रिश्ते विलुप्त होते जा रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी का एक बेटा ही हो तो फिर मतलब वो रक्षाबंधन किसके साथ मनाएगा, अगर बहन ना हो तो फिर उसके बच्चे बुआ किसको बुलाएंगे, अगर बेटी हो और भाई ना हो तो उस बिटिया के जब बच्चे होंगे तो वो मामा किसे बुलाएंगी। हाँ ये बात और है कि चंदा मामा तो है ही है, लेकिन एक मामा तो धरती पे भी होना चाहिए। तो चलिए अब अगला गीत आपको सुनवाऊंगी फिल्म नील कमल से, और इस गीत को सुनवाने के पीछे कारण ये है कि मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि हम अक्सर कहते हैं कि पिता जो है उनका प्यार मतलब

ज़्यादातर महसूस नहीं कर पाते या फिर वो शब्दों में माँ की तरह अपने प्यार को जता नहीं पाते। लेकिन अभी जो गीत सुनेंगे ना, उस गीत को सुनते सुनते आप भी समझ जाएंगे कि पिता का प्यार जो है वो कितना गहरा होता है। और मतलब उनके आँखों से जो आंसुओं की मतलब क्या कहें, वो एक तरह का सैलाब होता है जो निकलता है, उमड़ के निकलता है जब वो अपने बेटी की विदाई के समय आप किसी पिता को देखिएगा, तब समझ में आएगा कि पिता ने अपने हृदय में कितना प्यार छुपा के रखा है।

निसंदेह ये गीत सुनते सुनते आंखें नम हो ही जाती हैं, क्योंकि हर एक शब्द में पिता का आशीर्वाद और उसका प्यार झलकता है। अपनी नन्ही परी के लिए, बिटिया भले बड़ी हो जाए, भले उसकी विदाई हो जाए, शादी हो जाए, लेकिन फिर भी अपने पापा के लिए वो नन्ही परी ही होती है। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि बड़े होने पर शादी करनी है, विदाई करनी है, लेकिन प्यार तो वैसा ही होता है ना, वो बदलता तो नहीं बल्कि बढ़ते जाता है। और ऐसा है कि माता पिता के प्यार की बात हो गई, भाई बहनों की प्यार की बात हो गई, अब जब उनसे थोड़े बड़े होते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं घर से, तो फिर प्यार का रिश्ता जुड़ता है, वो किससे अजी, दोस्तों के साथ। और ऐसे में फिल्म दोस्ती से शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपको वो गीत ज़रूर सुनवाना चाहूँगी जिसे बड़े खूबसूरती से मजरू सुल्तानपुरी ने कलमबद्ध किया है और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 11:54 और ये कार्यक्रम 12 बजे तक आप सुनते हैं और ठीक 12 बजे आप मुझे सुन पाएंगे आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल पर, जहां मैं लेकर आऊंगी कार्यक्रम सुरभि, जिसमें दो सेगमेंट होते हैं, दो खंड, एक चर्चा है और दूसरा पहल। और अब चलते चलते, यानी कि माता पिता की प्यार की बात हो गई, भाई बहन के प्यार की बात हो गई, दोस्ती की बात हो गई, अब जब थोड़े बड़े हुए तो कहीं ना कहीं तो दिल लगाना पड़ेगा। और ऐसा है कि अब कार्यक्रम को विराम देने से पहले हर कोई चाहता है कि उसके जीवन साथी जो है उसके प्यार की उम्र इतनी हो कि उसी के नाम से शुरू हो और उसी के नाम पे खत्म हो। और इसी के साथ सुलक्षणा आज कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद से, मतलब उसे विराम देते हुए यही कहेगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए और अपने रिश्तों को बड़े प्यार से सहेजते रहिए। ये अंतिम गीत आज के कार्यक्रम में लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज में सुनिए और इसी के साथ सुलक्षणा को आज्ञा दीजिए, आपका दिन मंगलमय हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद

0: राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oaths as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered him the oath of office and secrecy at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati.
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: Along with Dr. Sarma, four MLAs, Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from BJP-ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sarma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as chief minister. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat last evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel.
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
1: Prime Minister Modi also reiterated his appeal to avoid buying gold until the situation returns to normal. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decisions of the first cabinet meeting under West Bengal's newly elected Chief Minister Shubhendu Adhikari. In a social media post, the Prime Minister said the welfare of people of West Bengal is the top priority. Mr. Modi expressed happiness that the people of the state will have access to Ayushman Bharat, the world's largest healthcare scheme that ensures top quality and affordable healthcare. The Prime Minister added that the double-engine government will ensure seamless delivery of key central schemes. The state government announced several important decisions after the first cabinet meeting yesterday. Transfer of land to the border security force within 45 days for fencing the borders with Bangladesh was among the decisions. In Uttar Pradesh, an FIR has been registered in Mahoba district against Samajwadi Party MP Ajendra Singh Lodhi over alleged objectionable remarks against Prime Minister Narendra Modi. The case was lodged at Mahoba Kotwali police station following a complaint filed by BJP leader Satyendra Pratap. Police said the FIR has been registered under various sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita. The controversy erupted after Lodhi allegedly made objectionable remarks against the Prime Minister while reacting to Mr. Modi's appeal urging people

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा

और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपए नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रहा हूँ, ठीक है क्या? तुम करेक्ट करो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: गाने कथाएं गोल्डन समय, आपनी सुनछेन 100.1 FM गोल्ड, 100.1 FM गोल्ड, FM गोल्ड। आपनार पछंदेर गान आपनार काने, सुनछेन तोमाय गान शोनाबो, तोमाय गान शोनाबो 100.1 FM गोल्डे, तोमाय गान शोनाबो, तोमाय गान शोनाबो 100.1 FM।

0: आकाशवाणी FM गोल्ड खांटी सोना।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ, मैं ये सोच

0: द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्रिपद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्य टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
4: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी। जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ

0: भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। IPL क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM गोल्ड खांटी सोना।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: ओलिविया नर्सिंग होम, ओलिविया नर्सिंग होम दमदम नागिर बाजार। ऑपरेशन छड़ाई पाइल्स फिशर फिशुला वेरिकोज वेन থেকে সুস্থ হয়ে একদিনে বাড়ি ফিরুন। লেজার পদ্ধতির মাধ্যমে লেজার প্রসিডিউর করছেন প্রখ্যাত সার্জন ডাক্তার প্রসেনজিৎ চৌধুরী। যোগাযোগ 9830468136।

0: एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: ओलिविया नर्सिंग होम, ओलिविया नर्सिंग होम दमदम नागिर बाजार। ऑपरेशन छाड़ाई पाइल्स फिशर फिशुला वेरिकोज वेन থেকে সুস্থ হয়ে একদিনে বাড়ি ফিরুন। লেজার পদ্ধতির মাধ্যমে লেজার প্রসিডিউর করছেন প্রখ্যাত সার্জন ডাক্তার প্রসেনজিৎ চৌধুরী। যোগাযোগ 9830468136।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। श्री प्रधान ने ये बात भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर की। उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हेमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण कर।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने इंडिया पोस्ट की अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी APT के दूसरे चरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार शाखा कार्यालयों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रही है। इससे ये कार्यालय स्थानीय मांग का विश्लेषण करने, प्रदर्शन की निगरानी करने और जमीनी स्तर पर त्वरित डेटा आधारित निर्णय लेने में सक्षम हो रहे हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि सरकार का डिजिटल प्रयास एक मजबूत सुरक्षित संरचना सुनिश्चित कर रहा है, साइबर सुरक्षा को मजबूत कर रहा है और विश्वसनीय, लचीली तथा भविष्य के लिए तैयार डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण को सक्षम बना रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें यह पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: listen to the music as much as I did presenting it to you. It's me, Ranjan Dutta, saying ciao and hope to catch up with you at 6:30 when I shall be there with movie Magic, Cinemagic on 107 FM Rainbow. But right now, stay tuned. Keep on listening to 100.1 Akashvani FM Gaud.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे।

0: ईरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्क्रियों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवारों की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
2: ICCR समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमा सानी ने इंडिया पोस्ट की अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी के दूसरे चरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यह टेक्नोलॉजी किस प्रकार शाखा कार्यालयों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रही है। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा कि AI का एकीकरण इंडिया पोस्ट को बड़ी मात्रा में परिचालन डेटा संसाधित करने, परिणामों की भविष्यवाणी करने, नियमित कार्यों को स्वचालित करने और डाक नेटवर्क में सेवा वितरण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में मदद कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालय में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली, अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा सहित चारों मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ 5:20 होते ही लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
0: जी हाँ, चाय और क्लासिक्स है प्रोग्राम का नाम। दोस्तों, शाम कभी अचानक नहीं उतरती, वो धीरे धीरे आती है, ठीक वैसे जैसे कोई पुरानी याद जो पहले सिर्फ हल्का सा एहसास बनकर दिल के पास बैठती है और फिर देखते ही देखते पूरी रात अपने नाम कर लेती है। दिन की भाग दौड़ अब थोड़ी थम चुकी है, सड़कों का शोर भी जैसे दूर जाने लगा है, खिड़की के बाहर हल्की हवा और भीतर चाय की गर्म प्यारी जिसके भाव में जाने कितनी पुरानी आवाजें घुली हुई हैं। कुछ आवाजें ऐसी होती है जो गाती कम है, महसूस ज्यादा होती है, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई सीधे दिल से बात कर रहा हो, कोई ऐसा जो कभी पूरी तरह मिला ही नहीं लेकिन कभी पूरी तरह गया भी नहीं। तो आज की ये शाम उन्हीं आवाजों के नाम, उन गजलों के नाम जो हिंदी सिनेमा में सिर्फ गाने नहीं थी बल्कि किसी की तन्हाई थी, किसी का इंतजार था, किसी अधूरी मोहब्बत का आखिरी पन्ना था। तो आइए चाय की खुशबू, हल्की रोशनी और पुराने सिनेमा के जादू के साथ शुरू करते हैं शाम ए गजल, शाम ए सिनेमा, चाय एंड क्लासिक्स में। और आपके लिए, जी हाँ आपके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर है आप लिखते हैं कुछ शायरी या कविता तो आज की शाम है आपके लिए बिल्कुल सही समय। सुनूंगी मैं ऑनलाइन ऑन एयर, हम सब इनफैक्ट सुनेंगे। तो कॉल कीजिए 2248-8085 और सुनाइए अपनी लिखी हुई कोई शायरी या कविता या फिर जो भी हो। और भाषा के बारे में चिंता मत कीजिएगा। क्या है कि ये कविता और शायरी जो होती है वो तो दिल से सुनी जाती है ना, तो भाषा वहाँ पे बहुत बुरा बैरियर या फिर रोक टोक नहीं हो सकती। फिलहाल के लिए चलिए, इंतज़ार रहेगा आपका, बातें होती रहेंगी, पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुन लेते हैं ये गज़ल।
2: इसके आँखों का नूर हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसकी आ

दोस्तों, पुराने फिल्मों की एक सबसे खूबसूरत बात क्या थी पता है? वो ये थी कि वहाँ हर भावना को शब्दों की जरूरत नहीं होती थी। कई बार सिर्फ एक नज़र, एक ठहराव या खिड़की के पास खड़े किसी किरदार की चुप्पी ही पूरी कहानी कह देती थी। आज के दौर में जहाँ भावना जल्दी में दिखाई जाती है, वही पुराने सिनेमा में एहसासों को वक्त दिया जाता था, मोहब्बत को धीरे धीरे घुलने दिया जाता था और शायद इसलिए वो दिल में ज्यादा देर तक रहती थी। गजल भी कुछ ऐसी ही होती है, वो सीधे दिल पर हमला नहीं करती, वो धीरे धीरे आपके भीतर उतरती है, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, जैसे आधी रात में दूर से आती ट्रेन की आवाज, जैसे पुराने किताब में रखा हुआ सूखा गुलाब। तो क्या हुआ, करे फोन हमें और सुनाए आपने अगर लिखी है कोई कविता या फिर जस्ट कोई गजल या पुराने गाने। अब अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में हमारा अगला गाना। जी हाँ, फिल्म बाजार से।

दोस्तों पुरानी फिल्मों में कई ऐसे किरदार थे जो बोलते कम थे लेकिन उनकी आंखों में पूरी गजल लिखी होती थी। गुरुदत्त की उदासी, राजेश खन्ना की मुस्कान के पीछे छुपी थकान, मीना कुमारी की आंखों का सन्नाटा, ये सब सिर्फ अभिनय नहीं था, ये एहसास थे। और शायद इसलिए उन फिल्मों को देखने के बाद लंबे समय तक एक अजीब सी खामोशी हमारे भीतर बनी रहती थी, एक ऐसी खामोशी जो तकलीफ भी देती थी और सुकून भी। आज की इस महफिल में हम चलिए उन्हीं खामोशियों की बात भी कर लेते हैं, उन्हीं रातों की जहां रेडियो धीरे धीरे बजता और टेबल पर चाय ठंडी होती रहती थी और कोई दिल ही दिल में किसी को याद किया करता था।

तो दोस्तों, गजलों की बात हो रही है तो एक और सवाल आपसे पूछने का मन कर रहा है कि पुराने फिल्मों में, पुराने सिनेमा का वो कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस थी या थे जिनकी आंखें खुद गजल लगती थी, बड़ी ही खूबसूरत आंखें थी। इसके बारे में अगर हो सके तो बताइए हमें। फोन लाइंस बिल्कुल खुली है 2248-8085। फटाफट फ़ोन कीजिए और बताइए कि ऐसे कौन से एक्टर या एक्ट्रेस थे पुराने ज़माने में कि जिनकी आंखें बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही गज़ल नुमा लगती थी आपको। दोस्तों, कुछ शामें ऐसी होती हैं जो अपने साथ बारिश लेकर आती है और कुछ बारिशें ऐसी होती हैं जो अपने साथ पुरानी यादें लेकर आती हैं। पुराने फिल्मों में बारिश सिर्फ मौसम नहीं होता था, वो एक एहसास होती थी, कभी मिलने का, कभी बिछड़ने का, कभी किसी ऐसे इंसान को याद करने का जिसे शायद हम कभी भूल ही नहीं पाए।

सोचिए, पुराना कमरा, लकड़ी की खिड़की, बाहर लगातार गिरते बारिश, टेबल पर जलता छोटा सा लैंप और रेडियो पर धीमी सी कोई गजल। ऐसे दृश्य पुराने सिनेमा की जान हुआ करते थे, जहां कहानी सिर्फ संवादों की से नहीं माहौल से आगे बढ़ती थी। और सच कहें तो गजल हमेशा से बारिश की सबसे अच्छी साथी रही है, क्योंकि दोनों में एक चीज समान है, दोनों धीरे धीरे असर करती हैं। फिलहाल अरूप दा ने फोन किया था हावड़ा से और मैंने पूछा था सवाल कि ऐसे कौन सी आपकी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस है जिनको जिन्हें देख के लगता है कि वो सिर्फ जबान से डायलॉग बोल के एक्टिंग नहीं बल्कि आंखों से भी एक्टिंग करते हैं, आंखें गजल नुमा है जिनकी। और उन्होंने जवाब दिया अमिताभ बच्चन। तो और साथ ही साथ रिक्वेस्ट किया है चला चला मुरारी हीरो बनने से किशोर कुमार की आवाज़ में इस गाने को सुनने का।

0: तो दोस्तों अभी पहले घंटे की समाप्ति ऑलमोस्ट हो चुकी है और हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो, नमस्कार पवन मैम।
0: नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चायन क्लासिक्स में।
1: जी मैम, मैं मोहम्मद नासिर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ।
0: जी नासिर जी, कैसे हैं, घर परिवार में सब कैसे हैं और आपका काम कैसा चल रहा है?
1: बहुत अच्छा काम चल रहा है मैम। मैं सबसे पहले तो मैं आपके एक बात शेयर करना चाहूंगा मैम कि मैं हमेशा आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, रोजाना मामूल के टाइम के हिसाब से सुनता हूँ मैं।
0: जी जी।
1: कभी कभी ये फोन प्रोग्राम आता है, लेकिन मैम आपसे बात होने के बाद मुझे ऐसा, बल्कि मेरे सारे जितने श्रोता हैं सब लोगों को कुछ इस तरीके का फील होता है कि जैसे थका मांदा व्यक्ति, थका मांदा इंसान जब अपने काम से फ्री होकर के घर आता है, घर में आने के बाद अपने परिवार से मिलता है और चाय पानी पीता, बिल्कुल उसी तरीके का मैम फील होता है आपसे बात करने के बाद और आपकी आवाजों को सुनने के बाद। दूसरी बात मैम, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैम आप जो ये पूछती है कि घर परिवार में सब लोग कैसे है, ये बात बिल्कुल अपनापन जैसा फीलिंग होता है, अपनापन जैसा मालूम पड़ता है कि लग रहा है कि मैं अपने किसी परिवार के एक व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, मैं अपने घर के किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि घर परिवार में कैसे है।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। ये तो हम भी तो आपके परिवार

0: का हिस्सा ही है अगर देखिए एक्सटेंडेड फैमिली है ना
1: जी बेशक मैम
0: तो फिर पूछना तो बिल्कुल बनता है। खैर खैर
1: जी जी थैंक यू मैम।
0: खैरियत जानना तो हक है हमारा।
1: जी जी जी बिल्कुल मैम जी बहुत अच्छा महसूस होता है।
0: बताइए तो मेरा सवाल ये था कि ऐसे कौन से एक्टर एक्ट्रेस हैं आपके हिसाब से आप के फेवरेट जो सिर्फ डायलॉग बोल के नहीं बल्कि आंखों से भी एक्टिंग करते हैं, गजल नुमा आंखें उनकी, खूबसूरत आंखें।
1: सबसे पहला नाम तो मैम ये बोलना चाहूंगा कि सायरा बानो।
0: जी ओके।
1: सायरा बानो की आंखें जब आप देखेंगे, अब दिलीप कुमार के साथ भी उनकी कई सारी फिल्में हैं, तो लगेगा कि वो जो बोलना चाह रही है वो बात उनके आंखों से झलक रहा है।
0: ओके।
1: इसके बाद दूसरा एक है आशा पारेख।
0: ओके।
1: आशा पारेख मैम भी जब वो डायलॉग बोलती हैं या जो रिएक्शन देती हैं वो रिएक्शन पहले से मालूम पड़ता है कि उनकी आंखों से वो रिएक्शन झलक रहा है।
0: जी जी।
1: तो ये दो दो हीरोइन हैं जिनकी आंखें से बहुत सारी चीज पता चल जाती है मैम।
0: ओके ओके थैंक यू सो मच। अभी फिलहाल आपसे बातें ढेर सारी करनी थी लेकिन क्या है कि समय समाप्त हो रहा है, इसके बाद फिर वो 10 मिनट वाला ब्रेक आ जाएगा न्यूज का, तो आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं बता दीजिए हमें फटाफट।
1: मैम मैंने अभी सायरा बानो और आशा पारेख का नाम लिया है तो मैं चाहूंगा कि फिल्म आशा पारेख का जो गाना है वो
0: रोटी कपड़ा मकान।
1: जी जी जी वो आप सुना दे बहुत बहुत मेहरबानी होगी।
0: ओके ठीक है ठीक है, फिर मुलाकात होगी आपसे। ठीक है
1: बहुत थैंक यू।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: तो चलिए रोटी कपड़ा और मकान के इस गाने से ये पहला घंटा यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं 10 मिनट बाद।

0: विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोड की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: वेलकम बैक, 100.1 FM गोल्ड है ये, मैं पापिया हूँ आपके साथ और ये प्रोग्राम का नाम है चाय एंड क्लासिक्स। तो दोस्तों, बातें हो रही हैं आज गज़ल, शाम में गज़ल की, और मेरा सवाल था आप सभी से कि ऐसे कौन से एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनकी आंखें गज़ल नुमा है, यानी कि आंखों से एक्टिंग करते हैं, आंखों से सारी बात बोल देते हैं। फिलहाल चलिए बात करते हैं हमारे अगले गाने के बारे में, अगले गाने की ओर चलते हैं, माफ़ कीजिएगा, और लेते हैं आपके फ़ोन कॉल्स।

0: दोस्तों, कई बार जिंदगी में कुछ बातें हम किसी से कह नहीं पाते, लेकिन एक गजल वही सब कुछ कह देती। वो दर्द जो हम छुपाते हैं, वो इंतजार जो कभी खत्म नहीं होता, वो मोहब्बत जो आज भी किसी कोने में जिंदा रहता है। और शायद इसलिए बारिश वाले शामों में लोग आज भी पुराने गाने ढूंढते हैं, पुराने खत पढ़ते हैं, या यूं ही खिड़की के पास बैठकर चाय पीते हैं। क्योंकि मौसम इंसान को अकेला नहीं छोड़ते, वो उसे उसके पुराने दिनों से मिलवा ही देते हैं। फिलहाल इंतजार कर रहे हैं हमारे लिए हमारे अगले कॉलर, चलिए देखते हैं कौन है। हेलो,
1: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग,
1: नमस्ते।
0: नमस्कार,
1: बिहार से अनिमेश भट्टाचार्य जी बात कर रहा है।
0: जी अनिमेश, कैसे हैं, सब ठीक ठाक?
1: सब ठीक ठाक है, अभी दिन ढल रहा है धीरे से
0: जी,
1: और ठंडी हवा चल रहा है।
0: वाह, आज एकदम एकदम शायराना मिजाज में लग रहे हैं आप।
1: तो हमने लिखने की कोशिश किया है, लिखा अच्छा, है छोटा सा,
0: अच्छा,
1: लेकिन वो बंगला में है।
0: कोई बात नहीं,
1: आपका इजाजत हो तो हम सुना सके
0: एकदम, क्योंकि भाषा से नहीं, हम दिल से सुनते हैं ना।
1: हम तो हिंदी को भी पसंद करता है, क्योंकि जो जितना भाषा सीखेंगे उनका काम के लिए बहुत सुविधा होगा।
0: एकदम एकदम।
1: तो छोटे बड़ाई क्रमागत आलो देखार तरे दिन जाए मास।

0: दोस्तों मीना कुमारी, अगर मीना कुमारी की बात करें तो वो एक चलती फिरती फिरती गजल थी मानी। अगर हिंदी सिनेमा में किसी चेहरे को गजल कहा जा सकता है तो वो चेहरा शायद मीना कुमारी का था। उनकी आंखों में हमेशा एक अधूरी कहानी दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे वो मुस्कुरा भी रही है और रो भी रही है। उनके किरदार सिर्फ किरदार नहीं थे, वो उन तमाम औरतों की आवाजें थी जो बहुत कुछ सहती है लेकिन कम बोलती है। पुरानी फिल्मों की दुनिया में मीना कुमारी एक एहसास थी, एक धीमी उदासी थी जो देखने वाले के दिल में उतर जाती थी। जब वो स्क्रीन पर चुप बैठती तब भी लगता था जैसे कोई शेर पढ़ रहा हो। उनकी आंखों में इंतजार था, उनकी आवाज में थकान थी और उनके चेहरे पर वो सलीका जो आज भी मिस किया जाता है। आज की तेज दुनिया में शायद लोगों के पास इतना वक्त नहीं कि वो किसी एहसास को धीरे धीरे महसूस करे, लेकिन पुराने दौर का सिनेमा हमें यही सिखाता है कि दर्द को भी खूबसूरती से जिया जा सकता है। और मीना कुमारी उस खूबसूरत दर्द की सबसे बड़ी मिसाल थी। फिलहाल इंतजार कर रहे हैं हमारे अगले कॉलर, देखते हैं कौन है। हेलो
1: जी, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका चायन क्लासिक्स में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको दीदी।
0: हेलो,
1: मैं पारस चुचड़ा होके से बोल रहा हूँ।
0: जी पारस जी, कैसे हैं? घर परिवार में सब कैसे हैं?
1: स्वस्थ है, जबरदस्त है, घर परिवार वाले भी सब सही है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों की छुट्टियाँ कब होने वाली है गर्मी की?
1: जी दीदी छुट्टी पड़ गई है।
0: अच्छा, ओके ओके, तब तो मजे है।
1: इस बार छुट्टी कम पड़ी है, 10 दिन का ही छुट्टी है।
0: अरे गर्मी की छुट्टी इतनी कम?
1: जी जी जी, तो 18 मई को फिर से स्कूल चालू होगा।
0: अच्छा ओके, ठीक है ठीक है, बताइए।
1: तो आपने तो मीना कुमारी जी के बारे में इतनी जानकारी दे ही दी है, तो मेरा भी मीना कुमारी जी फेवरेट थी पुराने जमाने में
0: जी,
1: और बीच के दौर में रेखा जी और हेमा मालिनी, उन लोगों की जो अदायगी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी।
0: ओके ओके,
1: और मेल एक्टर में दिलीप कुमार जी और राजेश खन्ना जी, इनके भी आंखें और मतलब एक्टिंग करने से पहले ही उनके भाषा बोल देती।
0: ओके ठीक है,
1: बहुत ही इन लोगों को उम्दा कलाकार थे और बहुत ही
0: इसमें कोई
1: पहले सुपरस्टार, पहले सुपरस्टार।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: तो आप मीना कुमारी जी के पिक्चर पाकीज़ा के चलते चलते ये गाना सुना दीजिए।
0: ठीक है चलिए चलिए सुनते हैं ये गाना। ओके, और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे ये गाना?
1: जी मेरे परिवार और सभी श्रोताओं को।
0: ओके ठीक है चलिए चलिए,
1: थैंक यू सो मच। आप सभी दीदी
0: थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं वापस पारस जी। ओके
1: ओके ओके दीदी, फिर से मिलेंगे
0: एकदम बहुत जल्दी मिलेंगे।
1: ओके गुड नाइट, गुड इवनिंग दीदी।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलिए ओके। तो सुन लेते हैं मीना कुमारी के बारे में बातें भी हो गई तो, और पारस जी ने भी रिक्वेस्ट कर दिया, तो सुन लेते हैं हमारा अगला गाना।

सूर्य की घड़ी में समय हो गया है 6:32 और चलिए बात करते हैं अब हीरो के बारे में। जी हाँ, पुराने सिनेमा के हीरो अलग थे। वो हमेशा जोर से नहीं बोलते थे, हर समय जीतते हुए नहीं दिखते थे। कई बार वो टूटे हुए भी होते थे, थके होते थे और भीतर से बेहद अकेले। रात के किसी दृश्य में टेबल लैम्प पर की रोशनी हाथ में जाएगा या सिगरेट और चेहरे पर गहरी सोच, ये पुराने सिनेमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। गुरुदत्त हो या अमिताभ बच्चन के शुरुआती एंग्री यंग मैन वाले किरदार, या राजेश खन्ना की वो मुस्कान जिसके पीछे हमेशा थोड़ी सी उदासी जरूर छुपी होती थी, और इन सब में कहीं ना कहीं एक गजल रहती, क्योंकि गजल सिर्फ इश्क की बात नहीं करती, वो टूटे हुए इंसान की आवाज भी होती थी। कई बार आदमी दुनिया के सामने बहुत नॉर्मल दिखता, लेकिन रात में जब वो अकेला होता तब उसके भीतर कितनी आवाजें चल रही होती हैं, ये सिर्फ वही जानती है। और पुराने फिल्मों ने उस अकेलेपन को बहुत ही ईमानदारी से दिखाया, बिना शोर मचाए, बिना ज्यादा संवादों के, बस एक गजल, एक धीमी सी रोशनी और एक इंसान जो खुद से लड़ रहा हो।

दोस्तों, आज के दौर में संदेश सेकंडों में पहुंच जाते हैं, लेकिन एक समय था जब लोग खत का इंतजार करते थे दिनों तक, हफ्तों तक। और शायद इसलिए उस दौर की मोहब्बत में सब्र ज्यादा थी, गहराई ज्यादा थी। पुरानी फिल्मों में खत सिर्फ कागज नहीं होता था, वो दिल का टुकड़ा होता था जिसे पढ़ते हुए लोग रोते भी थे और मुस्कुराते भी थे। कई फिल्मों में एक पूरा दृश्य सिर्फ खत पढ़ने पर बना होता। खिड़की के पास बैठा कोई किरदार हाथ में चिट्ठी और बैकग्राउंड

में धीमी सी गजल। आज शायद लोगों के पास इतने लंबे इंतजार का धैर्य नहीं, लेकिन जो लोग उस दौर को जी चुके हैं वो जानते हैं कि किसी के नाम का एक खत पूरी रात को खूबसूरत बना देता है, और अधूरी मोहब्बत वो तो हमेशा गजलों में सबसे खूबसूरत लगती है। क्यों है ना?

तो दोस्तों यहाँ पे अब गजलों से निकलकर थोड़ा सा मौसम का हालचाल जान लेते हैं। जी हाँ, गजलों की बात हो और मौसम का हालचाल न जाने ये कैसे हो सकता है। और शाम का वक्त आते ही मौसम ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो अगर आप बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो छाता, थोड़ी सावधानी दोनों साथ रखिएगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम वर्धमान और बीरभूम के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं बीरभूम में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना भी बताई जा

रही और हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मुर्शिदाबाद जिले के कई हिस्सों में भी मौसम अचानक करवट ले सकता है। वहां अगले 2 से 3 घंटों के दौरान गरज चमक, बारिश, तेज हवाएं और कहीं कहीं ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। उधर उत्तर 24 परगना में भी बादलों की आवाजाही तेज हो गई है। हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इसके अलावा हुगली और पूर्व वर्धमान के कुछ इलाकों में भी अगले कुछ घंटों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का असर भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, मौसम सुहाना जरूर है, लेकिन सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें और सुरक्षित जगह पर रहें। फिलहाल इतना ही। इस मौसम अपडेट में सुनते रहिए आपका अपना एफएम स्टेशन, जी हाँ, 107 एफएम स्टेशन। और चलिए बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं हमारा अगला गाना।

0: प्यार भरी बातें करेंगे, रोमांटिक गाने सुनेंगे उस वक्त, ठीक है? ओके ओके, अभी फिलहाल तो प्यार का नगमा आप सुनना चाहते हो, है ना?
1: हाँ,
0: अच्छा ठीक है, ठीक है, एक मिनट।

0: दुलाइन सुना।
1: सो स्वीट, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था।
0: थैंक यू।
1: तो चलो सुनाते हैं, मैं भी अपना फेवरेट एक गाना तुमको सुनाती हूँ, ठीक है आज?
0: Okay,
1: और उसके बाद फिर प्यार भरे नगमे में वापस मुलाकात होगी होपफुली, अगर फ़ोन करती हो तो FM रेनबो में। और

0: Eso se te venía.
1: मैं आपको रेनबो में ये गाना सुनाती हूँ, ठीक है? फिलहाल के लिए अभी इसको एंड करते हैं, चायन क्लासिक्स के ख़त्म होने का समय आ चुका है। तो पायल, आपसे वादा करते हैं कि उस अभी जब हम लोग दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे रेनबो में, तब हम ये गाना आपको सुना देंगे, ओके? फिलहाल के लिए मैं वाइंड अप करती हूँ। तो धीरे धीरे दोस्तों, अब शाम जो है रात में बदलने लगी है, चाय की कप शायद खाली हो चुकी है, लेकिन उम्मीद है आज के इस महफिल में आपके दिल में कुछ पुरानी रोशनियां जरूर जलाती होंगी, और इन्हीं रोशनियों को हम बरकरार रखेंगे अगले जिस दिन हम जब मिलेंगे। जी हाँ, 15 तारीख की सुबह हम वापस मुलाकात होगी आपसे, लो आ गई उनकी याद में। तब तक के लिए बने रही हमारे साथ ही, 107.1 FM गोल्ड है ये, माफ कीजिएगा, और मिलते हैं 107 FM रेनबो पर थोड़ी ही देर में। फिलहाल आशा भोसले भूपिंदर की आवाज़ में किसी नजर को तेरा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान संधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में

0: প্রোফাউন্ড।
1: বেশ, আর আমাদের বিশেষ সময় নেই, তাই একটা টেক হোম মেসেজ খুব ছোট্ট করে আপনার থেকে জানতে চাইব, ভালো থাকার জন্য দৈনন্দিন জীবনে আপনি কি অ্যাডভাইস করবেন ফিজিওথেরাপি এবং ব্যায়ামের মাধ্যমে?
0: ভালো থাকার জন্য অ্যাডভাইস হচ্ছে ভালো খাবার খেতে হবে প্রথম কথা। এখানে আমাদের যারা ডায়েটিশিয়ান বন্ধুরা আছেন তাদের কিন্তু হেল্প নিতে হয় প্রয়োজনে, তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দৈনিক ব্যায়াম করতে হবে, ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ, আর একটা ইম্পর্টেন্ট বাট নট ইন দ্য লিস্ট বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ এ মেন্টাল হেলথ, মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে, নিজেদেরকে ভালো থাকতে হবে, তাহলেই কিন্তু সার্বাঙ্গিকভাবে আমরা ভালো থাকতে পারবো।
2: এই যে আপনি খাবার কথাটা বললেন না, ভালো খাবার, সেটা কি মূলত গ্রিন ভেজিটেবলস ইত্যাদিগুলো?
1: পুষ্টিকর খাবার,
0: পুষ্টিকর খাবার, পুষ্টিকর খাবারের মধ্যে একটা ব্যালেন্স থাকবে, তার মধ্যে লো কার্বস, হাই প্রোটিন, লো ফ্যাট অ্যান্ড লটস অফ ভিটামিন অ্যান্ড মিনারেলস।
1: বেশ, আমাদের সময় আর নেই, মানে আমরা চাইছিলাম যাতে না হয় দীর্ঘমেয়াদী হয়,
2: আরো অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল, স্বাভাবিকভাবে সেগুলো আর আলোচনা করা গেল না। ঘড়ির কাঁটা বলছে যে এই শহরের প্রখ্যাত নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ফিজিওথেরাপিস্ট ডাক্তার কাজী আরাফাত বাসির পিটি, তাকে আমাদের বিদায় জানাতে হবে। ডাক্তার বাসির শুভরাত্রি জানাই, সঙ্গে একটা আবদার নিয়ে, এরকম কোনো একটি পর্বে আপনার ব্যস্ততার মাঝেও আরও একবার হয়তো আপনাকে আমরা চাইব।
0: ডেফিনেটলি।
2: আপনারাও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, টিউন করে রাখুন 100.1 FM গোল্ড। মৌসুমী সঞ্জয় আপনাদের সঙ্গে ফিরে আসছে dunia.com নিয়ে রাত্রিকে 11:10। টিউন করে রাখুন 100.1 FM গোল্ড। ওকে, আমরা ফিরে আসছি dunia.com নিয়ে, শুনলেন আরো।
3: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে বৈষ্ণবী। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
4: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
3: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के

0: सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency or NTA on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected SP Velumani as the AIADMK legislature party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former minister CV Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office and secrecy to him at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati. Along with Dr. Sarma, 4 MLAs were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from NDA-ruled states attended the ceremony. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts through substantial financial support from the government. The Ministry of Education today organized a high-level diplomatic interaction on Bharat Innovates 2026 in New Delhi as part of preparations for the Global Innovation Event scheduled to be held in Nice, France,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जाँच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न राज्य स्थानों पर भेजी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे से पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में उपस्थित रहे। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। कगिसो रबाडा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरी बार भारतीय महिला लीग का खिताब जीत लिया है। सेठो एफसी और सेसा फुटबॉल अकादमी के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ होने के बाद ईस्ट बंगाल ने खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।